Qatar Airways tema ta chuzo jitang kama ship chu shyang ala gelsa Kathmandu khurne ngi no dup chigal lon khang ki shen wa disnang gomala purbadur gurung ki phungbu sound la ki gate ngi shu chi ki sermurang yembu khurne wa win tugrang kane zambuling ki meter tong ge sinang then bu khang ri chup jiteri tu so thirmela jene zambuling la ming khepel kanangup nirmal purja nims da ki phungbu United Kingdom belait la khurne dop shen wa tanda yembi ngawang thindu sherpa Pakistan tang America ki क्याने मिरा सुन की फुंगु पाकिस्तान लांग लून ओतुप शेन वाए प्रतिनिधि सभा की आरिंग सोगदुला सोगमितुई सशिंग लाका की तुप्तुई तोंदोकला छातांग सिसा की टडिक बजारला समाजोप ग्यास मेतुप नेतांग तांग चालाक तुई गोंग फरुप नेतांग कोरला शुंगला शुनांग वाए तुग्रां क्याने सोगमितुई लोक की टांगा पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस तांग मालपोत सेवा लंगु रिम्बाला मिमांग तिवाला काले उतुप नेतांग मेता जोगो तांग शुंग की सेवाला पेन्सन पो जोगोला शुआ जाक नांगसुंग तुग्रां क्याने सोगमितुई सुनसरी तांग तराई मधेसला चुंगुप घटना की कोरला तांग ट्याङबु चेने क्यों गेकु लाकाला सक्सुको तुप मितेवला ठिम तोङ्गो तङ ठोटेन तङ लोबजुङ सेवा मालेपु दासला मिमाङ तुई कले मेता जोगुला सुङकी लाका गोजुगोला सुगेप नाङसुङ दिपारलाङ प्रतिनिधि सभाकी आरिङ सक्दु गोसुलुङमे प्रतिपक्षी सोखी सगमितुई सिलोन बालेन्द्र सागी ग्याकर तङ एमबी सन्सम कोरला सुङ्गुप सुङलप कोरला गोकुल क्यानाङ वे प्रतिपक्षी सोखी सगमितुई तुसोरिङ बुने जुन सिलोन टोसकला फेबौ सुवा जोकिन फेउ इन्सिनाङ सिलोन बालेन्द्र साह सोगला माफेउ कोरलासङ ट्युजाक नांगु शेनवे लोङिसुने जुन जिनक्यङ कि माथपु हेटाउन्डा मजा जुक्टुन याङलुङ जिनक्यङ किटुप टरिक गोसुसिमा जुक्टुन सङमेन्तुई गासु क्यानवे जुक्टुन सङटिल तेजेन आपूर्ति लोन खाङकी कारखाना कि टङबा न्यामसिप किटुपलाका गोसुसिमा जुक्टुन याङलुङ जिनक्यङ किटुप रेवा क्यानवे नोर लोन खाङकी कुसब कृष्ण कुमार भट्टराईकी गोठितला इन्जिनियर चार्टर एकाउन्टेन्ट ताङ ठिमकी खेपा मिराङ कि लक्ष्यपी सोकपी गलुप असार लाकी गते गने जुन कारखाना कि लोबजुङ किटुपलाका गोसु सेनवे सोकपी खाङ पूर्वाधार बजार कि नेताङ ताङ डोसुङकी कोरला लोबजुङ क्याने प्रतिवेदन सिगेकु टरिकी ओतु सेनवे ग्यालखापकी डिमडुल सङमेन्तुई सक्चेन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घकी लोकतेमा जिङक्यङ किटुप गाडी तुई पाट पूर्जाला बन्सार सुर तेर्गो ताङ खोरयुकला क्योन मेगेकु डिमडुल गाडी त्यो थगो टरिकी गोला नोर लोन पोला सुवाजाङ वे महासङ्घकी चिखेप पुण्य प्रसाद सिटौला गोठित कि सकपी दाङ नोर्लोनपो डाक्टर स्वर्णिम वाक्लेला डिमडुल सखुल्ला होतुप कलेतियो मेता जोगौला बुँदा चुचिकी सुवाइगी सिगेपु सेनवाए महासङ्घकी छोकपी सार्वजनिक डिमडुल सखुल्ला होतुप डोसुङ करोड चुकसुङकी तन्दोकलाई सुङकी सर्केक लाका गोजुगौ सङ सुवाजकु सेनवाए नेपाल टेलिकमकी लोची थम्बी नाङला ग्यालखाप नाङला 5G सेवा ग्याछाजोप मिकिल जाङने मोबाइल ब्रोडब्यान्ड यर्गे छर्सिकी मस्यौदा तेनवाए यम्बुला 5G सेवा ग्याछाजोपला जौति छर्सिकी ग्यालखाप नाङला चिलो निटोङ सुमचु सोआङा सेक्ला 5G सेवा केलु मिकिल जोगु सेनवाए टेलिकमकी एमबी मोबाइल सेवाकी तन्दिन नेताङ मोबाइल डाटा थोकु लुक्सो फरूप ताङ सेवा तेरूप सकपी सकपा तुई त्यामा न्यौ थोताङ ड्यालो तुप्ती ओताङ क्यान क्याउ टोङ्गुकी शिला ती मस्यौदा जौ शेनवाए जम्बुलिङ टोङ्बी थोला ओतुप फावासिङ्गुला दाङने जुन चेङ्गेजोपलाका गोसुनवाए साउन लाकी गते निसुगेकी सेमुने जुन फावासिङ्गुला छु लाचीकी मेलाला टरिकी तुप्ला फावासिङ्गु ताङ सिपकी दासा तेउला चेङ्गेजोपलाका गोजु सेनवाए फावासिङ्गु टरिक सकपा ताङ सुङ्ग्युप सोकपी टरिकला चुङ्गुप चेङ्गेजोप ल्यारिमला लाखाङ ताङ सिपकी नाथुङ त्यो चेङ्गेजोपलाका गोजु सेनवाए सोकपी साङ्गे चोमदेनदेखी ठुङ्गर थुसेन जात्रा ताङ थुसेन त्यो खेर्लु पर्लासाङ छाकछोपा बुलुप लाकाला रोग्रम किंवा उशेनवाए सजुपकी जोसालेन्सी जुला चु न्युङमोडप क्युकचोल नाजा ताङ फुड पोइजन ताङ हैजा नाजा फर्थुपुतपकी चुक ओतुप सामातियो सेगौला मेनपातुई टोङ्गुबिनवाए डाक्टर अरुणा उप्रेतीकी तान्दा सजुपकी तुसोला ठोतेनकी तन्दोकला छु बङ्गी सेगौला ताङ समा सेङ्गेतियो सेगौ सुङवाए तान्दा सजुपकी तुसोला मुलजुर बङ्गी थेन्दुपतपकी जुला छु न्युङमोडप ताङ लु नाजा गेकु डाक्टर उप्रेतीकी सुङसुङ तराईकी जोङखातियोला निन्मो सजुप बङ्गी उङुपतपकी निमिगोला पाङला थेन्दुप म्याङ्गुला ताङ छु बङ्गी सेगोला डाक्टर उप्रेतीकी टोङ्गु नाङवाए
Tandi Paljor Longitong Yajuga Sumtang Yajuga Jiki Tondokla Budget Peski Matopu Modest Pradeski Sanitation Tajila Sangi Alon Kanki Tong Kitublaka Gosunway Budget Peski Matopsima Mimang Teola Terup Siawatang Yergeki Laka Teola Kyun Poksima Lon Kanki Lobjung Kitublaka Gosu Shenway.

ई रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामे समाचार। सरकार सुनसरी आ सिरहा जिला में भेल प्रदर्शन के क्रम में मृत्यु भेल 4 गोटा के शहीद घोषणा करबाक निर्णय कयलक अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि एवं खेलकूद मंत्री तथा सरकार के प्रवक्ता स्मित पोखरेल आई बैसल मंत्रिपरिषद बैठक से ई निर्णय कयल गेल अछि। बैठक से सुनसरी जिला के ओम प्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, रविन्द्र कुमार मेहरा तथा सिरहा जिला के गणेश कुमार यादव के शहीद घोषणा कयने अछि। मंत्रिपरिषद बैठक के 5 निर्णय नेपाल भीतर पैठारी आ उत्पादन होबय वाला विद्युत से संचालन होबय वाला एम्बुलेंस सब वाहन में लागय वाला स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क आ मूल्य वृद्धि कर में पूर्ण रूप में छूट प्रदान करत। सुनसरी सिरहा जिला में भेल प्रदर्शन के क्रम में मृत्यु भेल मृतक व्यक्ति सबके सुनसरी जिला के ओम प्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, रविन्द्र कुमार मेहता, सिरहा जिला के गणेश कुमार यादव के शहीद घोषणा करबाक, पोर्चुगल सरकार के काठमांडू में कंसुलर कार्यालय कंसुलर ऑफिस खोल के सहमति देवाक, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक पद में निर्मल कुमार उप्रीति बारा के नियुक्त करबाक, पूर्व महालेखा परीक्षक श्री टंकमणि शर्मा डंगाल के संयोजकत्व में गठित एनसेल के शेयर खरीद बिक्री संबंधी अध्ययन तथा छानबीन प्रतिवेदन 2080 सार्वजनिक करवाक। नेपाली मैथिली हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा के प्रकांड विद्वान तथा वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेन्द्र विमल के अंत्येष्टि में नेपाल सरकार राष्ट्रीय सम्मान दिलक अछि। वरिष्ठ साहित्यकार विमल के अंत्येष्टि कार्यक्रम में नेपाल सरकार के दिशा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पौडेल गणेश सहभागी भ राष्ट्र सम्मान अर्पण कयल गेल अछि। हुनका नेपाल प्रहरी के एक टुकड़ी राष्ट्रीय सम्मान आय अर्पण कयलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर सोनी मुआगले सरकारी कागजात के डिजिटलाइज्ड आ डिजिटलाइजेशन से सुरक्षित करबाक चाही बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समिति के आज बैसार में बीतल साल भादव 23 आ 24 गते जरल श्रेष्ठता कारण 179 कार्यालय महालेखा परीक्षक के कार्यालय लेखा परीक्षक नहीं कर सकल विषय में ओपहिने सरकारी कागजात के डिजिटलाइज्ड आ डिजिटलाइजेशन करब जरूरी रहल क बतौलन। सरकारी लगानी भेल अभिलेख सुरक्षित रहल 2072 के भूकंप के समय अनुभव सुनबित ओ ताहि पर काज करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। भादव 23 आ 24 गति काबू से बाहर के परिस्थिति में राजस्व आ कोष तथा लेखा नियंत्रण कार्यालय अंतर्गत के प्रणाली सुरक्षित रहल मंत्री वागले कहलन। काबू से बाहर के परिस्थिति के कारण सरकारी कार्यालय जरला से लगभग 1.5 अरब के सरकारी श्रेष्ठता जरला से महालेखा परीक्षक के कार्यालय ई कार्यालय लेखा परीक्षण नहीं भ सकल। समिति स्थलगत अध्ययन कलाक बाद उक्त कार्यालय के अनियमितता भेल कि नहीं सेहो विषय बाहर आबि सकबाक बतौलन। समिति के मार्ग निर्देशन हिसाबे सरकार काज करबाक मंत्री वागले प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता वादी सा नेपालक लेल ऑस्ट्रेलिया के राजदूत साइमन अनसर्ट आई मंत्रालय के शिष्टाचार भेंट कलने छ। भेंट में ओ सब नेपाल ऑस्ट्रेलिया बीचक मैत्रीपूर्ण संबंध में थप सुदृढ़ आ परिणाममुखी बनेबाक विषय में जोर दिलन। महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार तथा संरक्षण, अपांगता समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा, केयर इकोनॉमी, मानव संसाधन विकास तथा नीतिगत अनुभव आदान प्रदानक विषय में सेहो हुनका सभक बीच परामर्श भेल छल। नेपाल ऑस्ट्रेलिया बीच कूटनीतिक संबंध स्थापना भेल समय से मैत्रीपूर्ण सहोदार्यपूर्ण संबंध कायम रहल चर्च करत मंत्री वादी आवला दिन में आपसी सहकार्य में और परिणामुखी बनेबाक लेल जोर दिलन। शिक्षा, मानव विकास, सुशासन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणक क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया नेपाल के करित आल विकास सहयोग प्रति ओ धन्यवाद व्यक्त कलन। तहिना सामाजिक सुरक्षा आ केयर इकोनॉमिक बीचक अंतर संबंध के विषय में चर्चा करत मंत्रीवादी महिला घरायसी तथा देखभाल सा के क्षेत्र में करताल योगदान के आर्थिक रूप में पहचान आ मूल्यांकन करबाक आवश्यकता रहल बतौलन। आवला दिन में नेपाल ऑस्ट्रेलिया संबंध के विकास सहयोग में मात्र सीमित निरायक प्रविधि तथा नीतिगत अनुभव हस्तांतरण, संस्थागत क्षमता विकास आ जनस्तर के संबंध विस्तार सहितक पारस्परिक साझेदारी के विषय रूप में आगू बढ़ेबा लेल मंत्रीवादी जोर दिलन। भेंटक क्रम में राजदूत अनसर्ट नेपाल ऑस्ट्रेलिया बीचक विद्यमान सहकार्य के महत्व चर्च करत आपसी हित आ प्राथमिकता क्षेत्र में सहकार्य के थप प्रभावकारी बनेबाक लेल सकारात्मक धारणा व्यक्त कयने छलथि।
सांसद सह प्रधानमंत्री के सीमा संबंधी अभिव्यक्ति सुधारवाक तथा संसद के अभिलेख सह हटेवाक आग्रह कलने प्रतिनिधि सभा का आजुक बैसार में शुरू में विपक्षी दलक सांसद सब अपन अपन आसन से उठ के विरोध जनौलन ओय के बाद सभामुख दलीय आधार में बाजे के समय देने छल। सांसद सब बीतल जेठ 17 गते प्रधानमंत्री संसद में सीमा संबंधी देने अभिव्यक्ति के संदर्भ में अखन धरि स्पष्ट जवाब नहीं आयल कहित सुधारवाक आग्रह कलन। उस प्रधानमंत्री के सीमा संबंधी अभिव्यक्ति तत्काल फिरता लेवाक आ संसद के अभिलेख से हटेवाक आ ओ सब सभामुख समह आग्रह करित आयल छथि। नेपाली कांग्रेसक सांसद भरत कुमार स्वार सीमा संबंधी अभिव्यक्ति सुधारवाक चाही कहित प्रधानमंत्री के सदन में उपस्थित लेल सभामुख के ध्यानाकर्षण करौलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के सांसद चंदेश्वर मंडल सुनसरी आ सीधा में भेल घटना में गोली चलेबाक अवस्था नहीं रहल कहित घटना के निष्पक्ष छानबीन खोजबीन कार्रवाई करबाक लेल मांग कलन। सांसद मंडल प्रधानमंत्री संसद प्रति उत्तरदायी नहीं भेल आरोप लगबैत दू तिहाई के सरकार महगी कृत्रिम अभाव सुकुमवासी के समस्या राहदानी तथा विद्युत शुल्क सहित विषय में प्रभावकारी समाधान देबाक चाही बतौलन। श्रम संस्कृति पार्टी के संसद दल के नेता हर्क राज राय प्रधानमंत्री नैतिक तथा पदीय जिम्मेवारी वहन करैत सदन में जवाब देबाक चाही बतौलन। यह क्रम में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद इंदिरा राणा मगर सांसद राय अपन अभिव्यक्ति में प्रयोग कने कोरोना शब्द प्रति आपत्ति जनबैत इस शब्द संसद के अभिलेख से हटेबाक मांग कलन। निर्वाचन आयोग के प्रमुख आयुक्त मान बहादुर कार्की सहित आयुक्त सब नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की बीच निर्वाचन आ सुरक्षा के विविध विषय में विचार विमर्श भेल। कांतिपत स्थित आयोग के कार्यालय में भेल भेट में

छलथि। आब खेल समाचार। आबयवला अगस्त 30 तारीखसँ मलेशियामे आयोजना होयवला एसीसी प्रीमियर कपके कप्तान सन्दीप लामिछाने रहल छथि। नेपाल क्रिकेट संघके हिसाबे सन्दीपके एहि प्रतियोगिताके लेल नेपाली टोलीके कप्तानके जिम्मेवारी देल गेल अछि। एक दिवसीय टोलीके कप्तान बनल सन्दीप 4 वर्ष पश्चात कप्तानके जिम्मेवारीमे घुरल छथि। प्रीमियर लीगके लेल कैन सोमदिन सार्वजनिक कयने 14 सदस्यीय नेपाली टोली कप्तानमे सन्दीप छथि। तऽ टोलीमे आसिफ शेख, अर्जुन कुमार, रोहित पौडेल, दीप खनाल, दीपेन्द्र सिंगेरी, सन्दीप जोरा, बशीर अहमद, ईशान पाण्डे, गुलशन झा, सिरमल, ललित राजवंशी, करण केसी आ हेमंत धामे स्थान बनौने छथि। एशियन क्रिकेट काउंसिल गत शनि दिन प्रतियोगिता खेल तालिका सार्वजनिक कयने छल। तालिका हिसाबे नेपाल पहिल खेल 1 सेप्टेम्बर सऊदी अरेबिया संग खेलत। प्रतियोगितामे 10 टोली के सहभागिता रहत। सहभागी टोली के 2 समूह में विभाजन कयल गेल अछि। नेपाल रहल समूह में सऊदी अरेबिया, मलेशिया, बहराइन आ हांगकांग रहल अछि। दोसर समूह में यूएई, ओमान, सिंगापुर, कुवैत आ कतार रहल अछि। ऑस्ट्रेलिया में अगस्त 21-30 देर होयवला एंटी टॉप एंड टी ट्वेंटी क्रिकेट सीरीज के लिए नेपाली टोली के घोषणा भेल अछि। एहि प्रतियोगिता में नेपाल के टोली के प्रतिस्पर्धा करत। नेपाल क्रिकेट संघ अनिल शाह के कप्तानी में 15 सदस्यीय टोली के घोषणा कलक अछि। कैन एक दिवसीय टोली में नहि रखने कुशल भुरतेल के सेहो ई टोली में समावेश कलक अछि। टोली अनिल आ कुशल सहित लोकेश बम, तीर्थराज दास, मयन यादव, पवन सराफ, दीपक डुमरे, कुशल मल, राशिद खान, नारायण जोशी, आकाश चंद, साहब आलम, विपिन खत्री, युवराज खत्री आ रिजन ढकाल एहिमे रहल छथि। आ मौसम समाचार। अखन देश भर मानसूनी वायु के प्रभाव रहल अछि। मानसून के न्यूनचापीय रेखा नेपालक पश्चिमी भूभाग के सरदर से किछ उत्तर तथा पूर्वी भूभाग से सरदर स्थान के लग पास अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के हिसाबे आई राति देश भर साधारणता बदली रहत। हिमालयी भागक किछ स्थान में मेघगर्जन, ठनका सहित मध्यम वर्षा, हिमपात के सेहो संभावना रहल अछि। देशक पहाड़ी भाग सहित बागमती, गंडकी, लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक तराई क्षेत्रक अधिकांश स्थान में मेघगर्जन, ठनका सहित मध्यम वर्षा के संभावना अछि। मधेसा कोसी प्रदेशक तराई भागक किछु स्थान में मध्यम वर्षा के संभावना अछि। कोसी, बागमती आ गंडकी प्रदेशक हिमालय तथा पहाड़ी भाग, कर्णाली प्रदेशक पहाड़ी भाग तथा लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक पहाड़ी आ तराई क्षेत्रक किछु स्थान में भारी वर्षा तथा 1-2 स्थान में अति भारी वर्षा के संभावना रहल विभाग जनौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सीरियाली अदालत पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के मृत्युदंड के सजाए सुनौलक अछि। अदालत आइ असद के अनुपस्थिति में सुनवाई करैत लगभग 14 वर्ष लंबा गृहयुद्ध के क्रम में भेल अत्याचार में दोषी ठहर कलक अछि। दिसंबर 2024 में ओ सत्याच्युत भेलाक बाद गठन भेल अंतरिम सरकार अंतर्गत असद शासन काल में भेल अपराध के लेल सुनायल गेल पहिल बड़का फैसला अछि। अंतरिम नेतृत्व ई अपराध में न्याय आ जवाबदेहिता सुनिश्चित करबाक प्रतिबद्धता जनबैत आयल अछि। इस्लाम वादी नेतृत्व के विद्रोही समूह तीव्र आक्रमण करैत दमास्कस दिस आगू बढ़ल पश्चात असद सीरिया से भाग कर रूस पहुंचल छलथि। रेडियो नेपाल वर्दीवास सुन रहल मैथिली भाषा के समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सुनसरी और सिरहा में प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले चार लोगों को शहीद घोषित करने का सरकार का फैसला। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सड़क, बुनियादी ढांचे, सामाजिक न्याय और सेवा प्रवाह सहित विभिन्न विषयों पर सांसदों ने सरकार का कराया ध्यानाकर्षित। रौथट की लाल बकैया नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे हुए लापता और सीरियाई अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मृत्यु दंड की सुनाई सजा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने सुनसरी और सिरहा जिलों में हुए प्रदर्शनों के दौरान जान गंवाने वाले 4 लोगों को शहीद घोषित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए सुनसरी जिले के ओम प्रकाश मेहता, जय प्रकाश मेहता, रविन्द्र कुमार मेहता तथा सिरहा जिले के गणेश कुमार यादव को शहीद घोषित करने का फैसला किया है। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने यह जानकारी दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक ने नेपाल में आयात या उत्पादित बिजली से चलने वाली एम्बुलेंस और शव वाहनों पर लगाने वाले स्वच्छ बुनियादी ढांचा निवेश शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर में पूरी छूट देने का भी फैसला किया है। मंत्री पोखरेल ने बताया कि बैठक ने वैदेशिक रोजगार बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक पद पर 12 के निर्मल कुमार उप्रेती को नियुक्त करने का फैसला किया है। इसी तरह पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल की अध्यक्षता में गठित एनसेल के शेयर खरीद बिक्री संबंधी अध्ययन तथा जाँच रिपोर्ट 2080 को सार्वजनिक करने का भी निर्णय किया गया है। इसी तरह पुर्तगाल सरकार को काठमांडू में कंसुलर कार्यालय खोलने की अनुमति देने का फैसला भी आज की मंत्रिपरिषद बैठक ने लिया है। सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों तथा समितियों की ओर से पेश की गई रिपोर्टों को सार्वजनिक और कार्यान्वित नहीं किए जाने संबंधी संचार कर्मियों के सवाल पर मंत्री पोखरेल ने कहा कि सरकार को सौंपी गई कुछ रिपोर्टें सार्वजनिक की जा चुकी है और बाकी रिपोर्टों को भी क्रमशः क्रियान्वित किया जाएगा। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने किसानों के लिए समय पर खाद और सिंचाई की व्यवस्था करने, बाजार में दिखाई दे रही खाना पकाने वाली गैस की कमी तथा महंगाई जैसे समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। सांसदों ने बिजली शुल्क, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मालपोत कार्यालयों में आम नागरिकों को हो रही परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए समय पर समस्याओं का समाधान करने की मांग की। सांसदों ने कहा कि किसानों को समय पर खाद और सिंचाई उपलब्ध नहीं होने के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने भारत से आसानी से खाद की आपूर्ति की व्यवस्था करने और किसानों को सहज रूप से खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। सांसदों ने कहा कि जनता की अपेक्षा के अनुसार काम नहीं हो पा रहा है, नागरिकों को प्रभावी सेवाएं नहीं मिल रही है और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। उन्होंने सरकार के समय रहते नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की संसद में उपस्थिति की मांग किए जाने के बावजूद वे सदन में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सदन में उपस्थित होने के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोशाक और संसद की मर्यादा कायम रखने में भी विफल रहे। इसी बीच प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक की शुरुआत में भी विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के बयान को सुधारने और उसे संसद की कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटाने की मांग करते हुए विरोध किया। अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने सरकारी दस्तावेजों को डिजिटलाइज और डिजिटलाइज करके सुरक्षित रखने पर जोर दिया। प्रतिनिधि सभा की सार्वजनिक लेखा समिति की आज हुई बैठक में पिछली वर्ष भदौ 23 और 24 गते जले दस्तावेजों के कारण 179 कार्यालयों का महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षण नहीं किए जा सकने के विषय पर चर्चा के दौरान उन्होंने सरकारी दस्तावेजों को पहले डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वर्ष 2015 के भूकंप के दौरान सरकारी निवेश से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रहने के अनुभव का उल्लेख करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मंत्री बागले ने यह भी जानकारी दी कि पिछले वर्ष भदौ 23 और 24 गते की असामान्य परिस्थितियों के दौरान राजस्व तथा कोष एवं लेखा नियंत्रक कार्यालयों के अंतर्गत आने वाली प्रणालियां सुरक्षित रही थी। राष्ट्रीय सभा की विकास आर्थिक मामलों तथा सुशासन समिति की आज हुई बैठक में विशेषज्ञों ने देश की समृद्धि के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और संभावनाओं के संबंध में अवधारणा पत्र प्रस्तुत किया। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ रोमकांत पांडे ने कहा कि नई पीढ़ी इंटरनेट के माध्यम से आय अर्जित करने में रुचि रखती है। उन्होंने डिजिटल प्रणाली की सुरक्षा के लिए आवश्यक नीतियां और कानून बनाने का सुझाव सांसदों को दिया। उन्होंने कहा कि केवल ऑनलाइन भुगतान करके सामान खरीदना और बेचना ही डिजिटल अर्थव्यवस्था नहीं है। पांडे ने तकनीक और ज्ञान पर आधारित ऐसी उत्पादन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता के बीच बेहतर जुड़ाव हो। इसके लिए उन्होंने सरकार से आवश्यक सुरक्षा कानून बनाने का आग्रह किया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। रौतहट के देवाही गोनाही नगरपालिका दो लक्ष्मीनिया स्थित लाल बकैया नदी में आज दोपहर नहाने के दौरान 3 बच्चे डूबकर लापता हो गए। लापता होने वालों में लक्ष्मीनिया निवासी शेख अमरे आलम के 10 वर्षीय बेटे मोहम्मद रमतुल्लाह, इसी स्थान के शेख खुरौसेद की 10 वर्षीय बेटी रोशन खातून और शेख ओसी अख्तर की 10 वर्षीय बेटी सबनम खातून शामिल है। जिला पुलिस कार्यालय रौतहट के अनुसार वे दोपहर करीब 1:50 पर लाल बकैया नदी में नहाने के दौरान डूबकर लापता हुए। सुरक्षा कर्मियों के साथ स्थानीय लोग भी नदी में लापता बच्चों की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार शाम तक बच्चों का कोई पता नहीं चल सका था और खोजी अभियान जारी था। निर्वाचन आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मान बहादुर कार्की सहित आयुक्तों और नेपाल पुलिस के महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की के बीच निर्वाचन और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कांतिपथ स्थित आयोग के कार्यालय में हुई बैठक में आगामी निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तथा निर्वाचन के दौरान नेपाल पुलिस की भूमिका सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। नेपाली, मैथिली, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान तथा वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. राजेंद्र बिमल के अंतिम संस्कार में नेपाल सरकार की ओर से राष्ट्रीय सम्मान देने का फैसला किया गया है। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड्गराज पौडेल गणेश नेपाल सरकार की ओर से अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होकर राष्ट्रीय सम्मान अर्पित करेंगे। मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइटेल के अनुसार नेपाल पुलिस की एक टुकड़ी की ओर से भी उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। धनुषा के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 10 निवासी वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. राजेंद्र बिमल का आज सुबह उपचार के दौरान प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में निधन हो गया था। जनै पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र तीर्थ स्थल गोसाई कुंड में हर वर्ष लगने वाले धार्मिक मेले की व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए 11 उपसमितियों का गठन कर व्यवस्थापकीय काम शुरू कर दिया गया है। लांगटांग राष्ट्रीय निकुंज के नेतृत्व में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण, स्वयंसेवक परिचालन, स्वास्थ्य सेवा, प्रचार प्रसार, यातायात प्रबंधन, आर्थिक प्रबंधन, समन्वय एवं आंतरिक व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा दर निर्धारण समिति सहित 11

0: अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सीरिया की एक आपराधिक अदालत ने आज पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मानवता के खिलाफ अपराधों और गृह युद्ध के दौरान किए गए गंभीर अपराधों के मामले में अनुपस्थिति में मृत्युदंड की सजा सुनाई। यह असद के खिलाफ सीरियाई अदालत का पहला बड़ा आपराधिक फैसला बताया जा रहा है। अदालत ने असद के छोटे भाई माहेर अल असद और उनके रिश्तेदार तथा पूर्व सुरक्षा अधिकारी आतेफ नजीब को भी मृत्युदंड सुनाया। नजीब अदालत में मौजूद थे, जबकि बशर और माहेर अल असद के खिलाफ फैसला उनके अनुपस्थिति में सुनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार बशर अल असद को पूर्व नियोजित हत्या, यातना, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और मानवता के खिलाफ अपराधों से संबंधित आरोपों में दोषी ठहराया गया। ये मामले सीरिया में 2011 से शुरू हुए करीब 14 वर्ष लंबे गृह युद्ध के दौरान हुई घटनाओं से जुड़े हैं। बशर अल असद ने वर्ष 2000 में सीरिया की सत्ता संभाली थी और दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों द्वारा दस्मिक पर कब्जे के बाद उनका शासन समाप्त हुआ। इसके बाद वह सीरिया छोड़कर रूस चले गए, जहां उन्हें शरण मिली। फैसले के बाद सीरिया के कुछ हिस्सों, विशेषकर दारा में लोगों ने फैसला का स्वागत किया। दारा को 2011 में असद सरकार के खिलाफ शुरू हुए विद्रोह का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह फैसला सीरिया में संक्रमणकालीन न्याय और पूर्व शासन के दौरान हुए कथित मानव अधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुनसरी और सिरहा में प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले चार लोगों को शहीद घोषित करने का सरकार का फैसला। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सड़क, बुनियादी ढांचे, सामाजिक न्याय और सेवा प्रवाह सहित विभिन्न विषयों पर सांसदों ने सरकार का कराया ध्यानाकर्षित। रौतहट की लालबकैया नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे हुए लापता और सीरियाई अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को सुनाई मृत्युदंड की सजा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइल को डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
2: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
3: स्टार 1415 हेस डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

0: गजल गंगा।
1: रुकावट आउँदा जाँदा मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। रुकावट आउँदा जाँदा मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। मलाई भन कहाँ पुग्ने हो कोसिस, कहाँ हिँड्छ नि बाटोका मुसाफिर। लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर, जमाना देखि छौँ एक साथ हामी, जमाना देखि छौँ एक साथ हामी। म मन्जिल हुँ रहो दुनियाँ मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। खबर सोधुन यो हावासँग मेरो, खबर सोधुन यो हावासँग मेरो। बनाएका बने जस्ता मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। अझै छन् चाहना डुब्ने कसैका, अझै छन् चाहना डुब्ने कसैका। अझै छन् साथ अप्ठ्यारा मुसाफिर, लगाउन आउँछ।

वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: रेडियो नेपाल नयाँ नेपालको समावेशी आवाज राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको सञ्चार
1: I'm sorry नमी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे प्लीज माफ कर दो
2: इट्स ओवर अब सब कुछ खत्म हो चुका है शायद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती